0: दिव्य हिराजे के मिनी मन दिवस
1: 26 जुलाई।
2: ए मावे सुट्टा लाफिंग
3: आहार में सुट्टा लाफिंग
4: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
5: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
0: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतु गे इस्तेमाल कुरुम गे साबुं दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा तफास हिसाब तकुं दक्का फस नुजेही अवह दुम्फतुगे इस्तेमाल करूं हुट्टा लमाहिंगा।

0: Guest RJ.
1: अदे कुरियम मिदनी गेस्ट आर्जे दें गैगण का हम प्रोग्राम निम्का हमें में त्यास है इन नमे निम्माल मुकुरिंग अदी एक बैर या का वहाँ का दक्का दान अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: नसीना आदम किन हाल हो
2: आदे आदे रंगल बराबर
1: कौन का में कहा दावसर वाले तो ने कौन ता कत्ती दुबई करना तैयार थी रे
2: वाह
1: सब अरे डी ती हिग्गा हम दो है रे हाँ तो फैन है
2: अभी गधा वाला मारू वह मारू
1: अभी
2: गधा मिया दो
1: हाँ हाँ मी गड़ी का अभी गधे बुनी वालों ने सिस्टर ने मिली मिया दो अभी गधे इधो
2: हाँ
1: मी गड़ी का वैसे मैं होन कौन होती
2: मेरे वाला वह मारू होने नूबे वह मारू मेरे
1: होने नों के कम को बया मर्ड तो
2: आजे
1: हाँ हाँ को मेरे ड्रेगन लोग के क्यों मुझे कंटन निम्मा दे हैं म्यार
2: हाँ क्यों मुझे कंटन निम्मा ला बेस का
1: हाँ
2: ये तो मैं निम्मा ला के
1: कोच के मेरे मी
2: मेरे सही हम तरकारी थोड़ा सा बैक थोड़ा सा सही
1: तरकारी है या बता
2: मैं कुछ दिन बता
1: आधा हाँ सी हत बताएं ती उल्पने
2: मीरे
1: मी आहणी लवर रीति वाणी अस्तु की बेगेन तो कौन कमें हिमेंगे तो कमें
2: रीति वैसा ऐसे की क्या गुले लें औरी माय
1: लवाई रीति लवाई रीति म्यूजिक का गुले लें नेमा म्यूजिक का दे ती गुलें जे ये वाली हम आवास वेस लास वेस दो
2: आवास ही ना रीति वाली
1: आवास लवा रीति दो
2: आवास लवा रीति
1: मी मी हाँ तो ना यार वादी फुरतम बैर जाती आवास लवा रीचे पुनी ये लवाई के रीति कम बदल करे था मिसाल का वारर रीति दवे ये कम को मिसाल का हिंदू नो ये लवाड़ो है और को पहाड़ के ये दवे इगड़ी का रीति नो दाने ये एको तं बेता
2: आए हैं बेता
1: एम बे ये आज तो की बेगेंगे ये बागु तो एको तं दानों ने
2: बागु क्या ये हालत क्या ये दुमावा गोता कुम नहीं
1: रहा ना बादी के गोले जो वारा फोरी का दवा चाहिए
2: हिंदी
1: हिम्मत नगल था तो मेरे कौन लवे मी उतनी नगा
2: मारे वही वही ऐसा बाला
1: माँ बो को बहनी था
2: बो को बहन ती थी नो ऐसे मिहान के नगाय रुदे नसी अवर रीस ले लवाई
1: हाँ हिम्मत तो
2: हाँ
1: मारे वही वही
2: हाँ
1: कौन बे कहाँ से कौन लान
2: कहाँ से कौन लानी यार ऐसे मडुआ हाँ और यहाँ परात तक प्रोग्राम हुशाला हो रहा है नहीं होना देंगाडुआ हो रहा है मैं
1: निमुने
2: निमुने
1: हम और बाजे रमा रखा तेरे के दे नसी वकेदान में
2: हाँ रिको मसाला
1: और मैं नसी ना के दवाया एको दे मेरे प्रोग्राम निम्मा दानी अन्ना हफ्ता के समा गेस्ट आर जे कुरिये दाने आ अगड़ी फटर है नुआ कड़ी बैंक मानना हफ्ता के रात कोरा भी है देबे फलो बद्दो को दान मेरे के प्रोग्राम आवड़ा वो शेरम गही तेरे दिनी फोनों में गही तेरे दिनी सामा দেন হুসামিয়ারি আর মাজিন হিমিয়া ফার থেকে সর বাজের আমার রাখা তে রেখেন এদেমন এফ এম গে কুরিয়া হুরি প্রোগ্রাম তাকা হুরিহা এহুতের না দেওয়া তোর মো কে দাঁড়ো আসসালামু আলাইকুম।

0: Dile y FM 91 MHz.
1: Balalan Sali Misista ge mi hafta ge show ga Balalan Sali film ka furta mar gun mi himnal deni Hindi film ge maulumat dehas 22 wana haru Netflix un da kam feshi Darling saki India ge Hindi black comedy film e mi Jasmeet K Reen ge furta ma feature film direction mi film produce ko fawani mashhur batala Alia Bhatt ge Amila production house kamawa Eternal Sunshine production sa Shahrukh Khan ge Red Chillies entertainment kuligen film ge magand role tang ada ko fawani Alia Bhatt Shefali Shah Vijay Verma adi Roshan Mithiu
2: mera naam hai Hamza Sheikh main Badrunisa Sheikh ka shohar hu main apni biwi se behad mohabbat karta hu lekin मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ।
3: Hey darlings, you mad you, I love you, please.
4: बाप रे बाप।
5: रमन काका। हमजा नहीं आए?
4: नहीं।
5: साहब, missing complaint file करनी है।
6: कौन missing है?
5: मेरे husband, हमजा।
6: कभी से गायब हो?
5: परसों।
6: कल से या परसों से?
5: कल और परसों के बीच में से साहब।
7: ना दो दिन पहले काम पे गया।
2: कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ। टीसी है।
7: लेकिन वापस ही नहीं आया।
8: काम पर गया, घर पे वापस नहीं आया।
6: क्या बोलते दादू?
9: केस क्लोज है सर, कंफर्म।
5: मैं समझाती
2: हूँ।
5: मेरी बात तो करो।
2: क्या कर रही हो ये सब?
10: ए बच्ची,
2: हाथ खोल साली तो जान से जाएगी।
10: किधर जा रे ली? अरे आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई।
5: दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना,
7: चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी पर दारू नहीं पिए।
10: करू हलाल बिछा के जाल, बचेगा कैसे मेरे लाल।
5: मेरे को हमजा को मारने का नहीं है, इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ की। फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू।
2: कब तक छुपा पाएंगे हमजा को? पकड़े जाएंगे
5: सर।
8: हमजा के डैडी ऑफ हो गए।
5: अल्लाह मियां उन्हें जन्नत अता फरमाए।

0: okay?
1: No, I went down like an old lady. I really hurt my knee.
2: Come on up and get it off, no? Come on.
0: Anyone we can sue?
1: There was this nice guy that helped me, though.
0: Is he good looking?
2: Before you go, take your book, souvenir.
1: Be happy for this moment.
2: This moment is your life.
3: দেহাস দেবনাহর রিলিজ করি আনফেথফুল লাকি এড্রিয়ান লাইন ডাইরেক্ট করি ফিল্মে ফিল্ম ফেনিগিনদানি ডায়ান লেন রিচার্ড গিয়া আদি অলিভিয়ে মার্টিনেজ ফান্সাস মিলিয়ন ডলার গে বাজেট কো ফেদি মি ফিল্ম বক্স অফ ফিহুগা সাতেক নাওয়ার পয়েন্ট 1 মিলিয়ন ডলার লিপুনো মি ফিল্ম ডায়ান লেন দেখকে মোল একটিনা অস্কার আদি গোল্ডেন গ্লোব নমিনেশন লিপুনো
1: I just wanted to call you and thank you and I wanted to send you a bottle of
2: Come and see me I'll make you some coffee
1: Here I am again.
2: Want to dance?
1: Now?
2: Your eyes are amazing, you know that? You should never shut them.
3: Hindi film Murder release ve dihas satavarna haru. Mahesh Bhatt produce ko Anurag Basu direct kuri me film ge thari naki. Malika Sharawat, Imran Hashmi, Adi Ashmit Patel. Emme first crore rupees ge budget ko ufedi me filma fan service crore libi bodu kamyabi hodi.
4: Sonia? You mean...
5: हाँ मेरी बड़ी बहन मेरे पति की पहली बीवी
4: याने अपनी बहन के पति से तुम्हारी शादी I don't understand
5: कभी कभी जो होना होता है ना सनी वो हो जाता है चाहे कोई कुछ भी कर ले
4: मतलब
5: काश उस दिन मेरा जन्मदिन नहीं होता काश उस दिन पापा ने स्टोर की ओपनिंग नहीं रखी होती काश उस दिन मैंने जबरदस्ती अपना टिकट दीदी को ना दिया होता कि वो बैंगलोर जाए
3: द फिल्म गविस फेननी मेदुफंती के हमजे है आई लागे तेरेगा अंगे मिहाय एहसास करेवे एखने वे कमे मी द फिल्म के एमे बड़ो तफात की फिल्म के नेमु अनफेथफुल निमेनी वकी गोतेन नेंगी नूतन वस्कमे के तेरेगा ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಮರ್ಡರ್ ನಿಮಣಿ ಫಿಲ್ಮಿಹಾ ಅಮಿಲ್ಯ ಫುಲ್ ಹುಣ್ಣ ಹವಾಲ್ವೆ ಅಂಗೆ ಮೀಹಾಯ ಮಾಫಂಗೆದಿ ಕ್ಯಾವೆನಿಗೆ ಗುಳುಂ ಅಲುಂ ಬದಹಿವಾ ಮೋರಲ್ ನಿಮ್ಮಕುಂ